पत जाए अष्टपदी दस वस दूले पाछे पावे एक वस कारण विखोट गुआवे एक बीना दे दस भी हिरले तो मुड़ा को कहा करे जिस ठाकर सुना ही चारा ता को कीजे सद नमस्कार राजा के मन लागा प्रबिठा सर्व सुखता हूँ मन बुठा जे जन अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सौ अपनी दे रास खात पीत वरत आंदो लास अपनी अमान काजवा और साले अज्ञानी मद रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी वास्त दिस आगे राख है ब्रह्म की आगे मन माथे उसे चौगुन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अर्गवाद वाया कहेत सरपर होवत जान नेत बिरख की छाया स्यो रंग लावे ओ बिरसे ओ मन पछतावे जो दिस है सो चालन हार लवट रहे होते अंधार बटाओ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटंब सवाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोवन धनवाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्र मिथ्या रंग स्वा

तेरे रायन बृथा बिहाय मेघ बिना जो केती जाए। गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम जो कृपन के निरार्थ धाम। धन धन ते जन जे कट वस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ। रहत अवर काचे अवर कवावत माने प्रीत मुखो गण लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न गाहू पीन। अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरे जिसके अंतर वसे निरंकार तिसकी सिख तरह संसार। जो तू भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जान है अपना किया पे मान है आपे आप करत नवेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सकल ते रहत सब का जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लाए लड़ लाए शांत नंत रहे असवाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नान करी सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनसाय अंगवेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत गाहे ते सागर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परमगत पाव है। जे प्रसाद वसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद करे संग सुख वसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से जसोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को मान है मुख ता को जस रसन बखान है। जे प्रसाद तेरू रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरघ है मान पावै नानक पद से ती कर जावै। जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावत सराम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उला रहत मान सुख भावे हार हर जस गायत। जे प्रसाद तेरे सगल चिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताकै। जे प्रसाद तुझको न पूछे मन सास सास सिमरो प्रभु चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपूखन पहरी जय मान तिस सिमरत गुमाल सकी जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी मान तिस प्रभ क्यों कबू ना विसारी।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पर सब त्यावह है सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रेस्त गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा अखल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो उबारे। कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुमका वहो आप हाथ दे मोहि बचाव हो सुखी बस है मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब रन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करिए और अच्छा। राख लिहो मोहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पल मोबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूल उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती तुमरा लखन जाय पसारा केह बिन सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवे बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवति उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता।
ਜੇ ਅਸਤੁਇ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸਤ ਦੁਖਿਤ ਹਵੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ

सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा हा।

चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फुनतीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत सा

हमरी करूँ हाथ दर्छा, पूरन हुए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। दीनन की प्रतपाल करे नित, संत उबार गनी मन गारे। पछ पछु नग नाग निराधप, सर्व समय सबको प्रतपारे। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दया निद,

0: दिन रात नानक चाओ ए हो नानक चाओ ए हो
1: नानक चाओ ए हो
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

राम सिरो मन सरब में भगत रहे लिवतार, सोई नाम पदारथ अमर गुर तुस दियो करतार।

0: दत्त में त पार गुण गन उदार
1: दत्त पर नाम निर्भय निकार
0: अद्भुत प्रचंड में गत अखंड
1: से कर्म से धर्म
0: सर्व बनांड अंदर बांड
1: जात्री

0: ना कर्मम ना काये अजन्म ना जाये
1: परे है पवित्र
0: अदृश्य
2: भगवती चंते प्रसाद कथते के जाहर जहु के आज के आचिर जेदेसे के आभिज बेसे
0: के आकंज करमे के आपांज परमे
2: के आभिज लोके के आदित सोके
0: के अवतूत भरने के प्रभूत करने
2: के राजन प्रभा है के धर्मंग दुजा है
0: के अशोक भरने के सर्वा परने
2: के जगतं कृति है के छत्रं छती
0: के ब्रह्मा।

0: sarbang tranang
1: sarbang karmang sarbang dharmang
0: sarbang yukta sarbang mukta
1: saval chantva prasad namo narkanase sadevang prakase
0: anangan sarupe apangam pabhute
1: pramatang pramate sada sarvasate
0: aga sarbhute nirbhat pabhute
1: anangi aname tribangi tikame
0: narpangi sarupe sarbangi anupe
1: na potre na putre na satre na mitre
0: na tate na mate na jate na pate
1: nisakang sarik hai amito amik hai
0: sadevang prabhahe ajay hai ajah hai
2: bhagati chantwa prasad ki zahar zahur hai ki hazar hazur hai
0: hame chul salam hai samastul kalam hai
2: ki sahib dimag hai ki husnil charag hai
0: ki kamal karim hai ki rajak rahim hai ki
2: rozi dehind hai ki razak rahind hai
0: karimul kamal hai ki husnil jamal hai
2: karimul ki raj hai garibul nivaz hai
0: hariful sikan hai riasal fikan hai
2: kalankan pranas hai samastul nivas
0: hai akanjul kanim hai rajak rahim hai
2: samastul jubah hai ki sahib ki raj hai
0: ki narkam pranas hai bestul nivas hai
2: सबुल गवन है हमें सुल रवन है
0: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है
2: परमीश है समस्तुल अदीस है
0: अजय सुल अलेख है हमें सुल अपेख है
2: अनुल जमा है हमी कुल मा है
0: करे मुल्क माल है के जुर्रत जमाल है
2: अचलंग प्रकाश है कि हमें तो सुबास
0: के अजब स्वरूप है कि हम तो प्रभूत है
2: तो पसा है कि आत्म प्रभा
0: के अचलंग अनंत है कि हम तो पग है
2: संत है प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम
0: हर बार अंग हर नर पर पंज
2: अनगन प्रणाम मन मन
0: हर नर अखंड बार नर अमंड
2: अनवनास मन मन प्रकाश
0: गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम
2: श्री जंग आसन पंग
0: उपमा पारगत में तो दार जल थल महंत दिसवित बेअंत
2: अवनास रिधर दुरा
0: आजान बाहु एक के सुदाहु
2: कारात कथनी अनाद
0: खलखंड के आल गुर बर अकाल
2: प्रणाम चित चरण नाम
0: अच्छे जगाता जितन बात
2: अनरंज बात
3: अंटुट पंडार अंधठ
0: पार अनभर अंत दाता महंत
2: संत है प्रसाद को नाले हैं और काले हैं
0: खलखंडर है मैं मंडल है
2: केसर है परमेश्वर है
0: कलकार है सर्व भार है
2: केतरण है जग केतरण है
0: मन मान्या है जग जान्या है
2: सर्वंग पर है सर्वंकर है
0: सर्वाच्य है सर्वनाश्य है
2: नाकर है विश्वंभर है
0: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
2: मंडस है कलखंडस है
0: पाते पर है करुणाकर है
2: जप है थप थप है
0: अक्ता कृत है अमृत अमृत है
2: अक्ता कृत है
0: करनी कृत है
2: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
0: अक्ता कृत है अमृत अमृत है
2: अमृत अमृत है
0: निर्णायक है खलकायक है
2: शंबर है करनालय है
0: निर्णायक है सर्पायक है
2: भंजन है अर्गंजन है
0: रिप्तापन है जब जापन है
2: अलंकृत है सर्वाकृत है
0: कर्ता कर है अर्ता हर है
2: मातम है सर्वातम है
0: आतम बास है दस के दस है
2: चंद्र नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे
0: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
2: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे
0: नमो बिंद्र बिंदे नमो बीज बीजे
2: नमो राज संग ताम संग शांत रूपे
0: नमो परम तन तंग तन तंग स्वरूपे
2: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
2: नमो जुद्ध जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो भोज भोजे नमो पान पाने
2: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे
0: नमो इंद्र इंद्रे अनादं प्रभुते
2: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
0: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
2: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
0: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
2: सच्ची चंद्र जे अले अभे अभे
0: अभू अजू अनास कास
2: अंज पंज लख पक
0: अकाल दयाल अलेख पेख
2: नाम काम गाडा
0: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
2: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
0: अकर्म अपर्म अगंजे अलेखे
2: न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अबर्म अगंजे अलेखे भुजंग प्रिया चंद्र नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
0: अकंजुल अनामे समस्तुल निवासे
2: नागम विभूते समस्तुल स्वरूपे
0: कर्म प्रणासी सुतर्म प्रभूते
2: सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी
0: करिमल कुनिंदा समस्तुल निवासे
2: अजय विभूते गजाय अवगनी में
0: हरियम करियम करिमुल रहिम
3: चत चक्रवर्ती चत चक्र भुक्ते
0: स्वाम्बम शुभम सर्वदा स

0: जान के सुंदर हिंसती है राज हजारे।
1: पूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे।
0: श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे।
1: तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक अभिषेक है।
0: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान जबान के पेख है।
1: कौन आहार जति जत थार सबे सो विचार हजार के देखे।
0: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लेखे।
1: शुद्ध सिपा दुरंद दुबासो सांस ना दुर्दार दुर्जान दलेंगे।
0: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे।
1: तोर अरीन मरोर मवास नमाते मतंगन मान मलेंगे।
0: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
1: वीर पाट बड़े बड़ियार बछारे सार की थार पछैया।
0: तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया।
1: गारे गरान को तोरन हार सो बातन ही चकचार लवैया।
0: साहिब श्री सबको से नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया।
1: दानव देव निंद निसाचर पूत पविक पवान जपेंगे।
0: जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे।
1: पुन प्रतापन बाट जैत तुन पापन के बो पुंज खपेंगे।
0: सात समूह पर सन फिरे जग सत्र सबे अब लोग जपेंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र नरात पर जोन लोग को राज करेंगे।
0: कोट स्नान गजात दान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे।
1: ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जम्बफा।

0: जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता
1: गिल बिक सकल दे को हरता दुष्ट ओखियन को छे करता
0: श्री असुचा पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला
1: मन बाचत फल पावे सोई दुख न तिसे बे आपत कोई अड़िल
0: सुने गुंग जो या सुरस ना पावे सुने मूड चित लाए चतुरता आवे
1: दुख दर्द पो निकट न तिन्नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को गए चौपाई
0: संबत सत्रह सहस पुनी जय अध सहस पुन तीर के ही जय
1: पार सुधी अश्मी रविवार तीर

0: क्या तुद कर्म कमाया,
1: के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया,
2: जिन हर तेरा रच रचा सो हर मन ना बसाया,
1: गुर प्रसादी हर मन बसया पूर्व लिखिया पाया,
2: कहे नानक यो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से उचित लाया,
1: हे नेत्रो मेरे हो हर तुम है ज्योत तरी हर बने।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई
1: कर्म लिखंते पाई है रुत सुहाई
0: मान त्रिण त्रिपवन मौल्या अमृत फल पाई
1: मिल साधु सुख उपजै लती सब छाई
0: नानक सिमरै एक नाम फिर बहुत न ताई
1: पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ
0: अपने चरण जपायन बिच

0: आनंद पे हास उपाया मिल गुरु गोविंदा आनंद पे हास उपाया मिल गुरु गोविंदा हे रव हे सस हे करनानंद मेरी अब विनती सुन लीजा शस्त्र सो अत हिरण पीतर जूझ मरो तो साज पति जा जय शिवावर मोए है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरू और सिखो अपने ही मन को ए लालच हो गुंताओ चरो तन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार तीरज ताम बनाए ए तन बुद्ध सिंह दीपक ज्यो जिया दीपक ज्यो जिया
1: कातर ताक द्वार बार गौड़ी गोरे महला पंजवा जाके बस खान सुल्तान जाके बस है सगल जहां।

हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण हाथ दे राखै कर अपने, सदा सदा रंग माण साचा साहिब सद मेहरवान, बंद पाया मेरा सतगुर पूरै, होई सर्व कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खाण अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खाण अपने दास की आप पैज राखी, नानक साध कुरबान। सो कहो टल गुर सेवी अहन सहज, दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म।